सुप्रभात अम्बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 22 जुलाई 2026 बुधवार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्योदय हुआ है 5:35 पर और सूर्यास्त होगा 7:23 पर। आज नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे भी मनाया जा रहा है।

जितनी देर यह जीवन चल रहा है, बंधनों से छुटकारा पालो, और वो संभव होगा तब जब ब्रह्म मिटेंगे। ब्रह्म तब तक नहीं मिट सकते जब तक कि ज्ञान के उजाले के कारण अज्ञानता का अंधकार नहीं मिट जाता।

FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 16, शीर्षक है वफा। एडिट किया भारत सपोरी ने। स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरणी।
3: वफा सिर्फ एक वादा नहीं, एक जज्बा है जिसे निभाने वाले कम होते हैं और आजमाने वाले हजार। कभी ये मोहब्बत का रूप लेती है, कभी जुदाई का दुख। आज पहलू और गीत में चलिए महसूस करते हैं वफा के हर पहलू को। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी, आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता 90.0 FM पर। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मोहब्बत सिर्फ कहना नहीं, मोहब्बत तो निभाने का नाम है। वो एक वादा जो हर मोड़ पर साथ निभाए, कोई चाहे मिले या ना मिले, पर वफा अमर रह जाती है।

जो दिल से मोहब्बत करते हैं वो बेवफाई के बाद भी वफा करते हैं। किसी की यादों में जीना भी तो एक तरह की वफा है, जो सिर्फ मोहब्बत करने वाले समझ सकते हैं।

कुछ मोहब्बतें सिर्फ जुदाई में जीती हैं, कभी एक आंसू बनके, कभी एक कहानी बनके, पर वफा करने वाले कभी शिकवा नहीं करते, बस एक मुस्कुराहट के साथ मोहब्बत को याद करते हैं।

कोई छोड़कर भी चला जाए तो भी वफा करने वाले वफा निभाते हैं। उनके लिए मोहब्बत सिर्फ हासिल करना नहीं, किसी की यादों में जीना भी है।

मोहब्बत सिर्फ लफ्जों का खेल नहीं, ये एक रोशनी है जो दिल से दिल तक जाती है। जिसे सच में प्यार होता है वो हर मोड़ पर साथ निभाता है। जो दिल से वफा करते हैं वो फासलों से नहीं डरते। एक सच्चा आशिक सिर्फ मोहब्बत नहीं करता, वो वफा का हकदार भी बनता है, क्योंकि उसके लिए प्यार सिर्फ हासिल करना नहीं बल्कि

कुछ मोहब्बतें मिलने के लिए नहीं होती, कुछ प्रेम कहानियां जुदाई में लिखी जाती हैं। दूर रहकर भी एक दूसरे की यादों में जीना भी तो वफा है। कई बार दूरियां सिर्फ शारीरिक होती हैं, दिल तो एक सा धड़कते हैं। सच्चा प्यार चाहे जितना भी दूर चला जाए, वफा का एहसास जिंदा रहता है, क्योंकि मोहब्बत एक बार होती है और सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती।

वफा सिर्फ उस वक्त तक नहीं होती जब तक कोई साथ हो। कई बार बेवफा होने वाले भी यादों में वफा छोड़ जाते हैं। जो सच्चा मोहब्बत करता है वो धोखा मिलने के बाद भी वफा करता है, क्योंकि उसके लिए प्यार सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक इबादत होती है। वो दुख से गुजर सकता है मगर अपनी मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ता। बस एक ही तमन्ना रहती है कि काश वफा का सिला भी वफा होता।

वफा सिर्फ आशिकों का सिलसिला नहीं, दोस्ती का फर्ज भी होता है। दोस्त वो जो खुद भले ही टूट जाए मगर दोस्ती का वादा न तोड़े, जो अपनी खुशी से पहले दोस्तों का सोचता है वही सच्चा दोस्त होता है। दोस्ती एक मिसाल है जिसमें सिर्फ वफा का दामन पकड़ना पड़ता है। जिसने एक सच्चा दोस्त पा लिया उसने दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता जीत लिया, वो रिश्ता जो न खून का मोहताज है ना किस्मत का।

वफा सिर्फ एक वादा नहीं, एक कुर्बानी भी है। कभी किसी की खुशी के लिए खुद को भूल जाना, कभी मोहब्बत में खुद को मिटा देना, ये सिर्फ वही कर सकता है जिसे अपने प्यार से सच्ची वफा हो। मोहब्बत चाहे कमजोर कर दे, मगर वफा इंसान को मजबूत बना देती है, क्योंकि जो दिल से चाहता है वो अपने प्यार के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहता है।

0: का।
1: वफा सिर्फ दुख का सबब नहीं, एक सुकून भी है। जब कोई दिल से मोहब्बत करता है तो उसके साथ एक अजब सी तसली होती है। कोई चाहे मिले या ना मिले, मगर वफा का एहसास दिल को सुकून दे जाता है। वफा करने वाले कभी शिकवा नहीं करते, बस मोहब्बत को इबादत की तरह निभाते हैं। मोहब्बत जब सच्ची हो तो वफा दुख नहीं देती, सिर्फ एक गहरा सुकून देती है, क्योंकि प्यार की असली जीत मिलने में नहीं, वफा निभाने में होती है।

ये था पहलू और गीत वफा के नाम। फिर मिलेंगे एक नए पहलू के साथ और एक नए गीत के साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त किरणी, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 16, शीर्षक था वफा। एडिट रिकॉर्ड किया भारत सपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान व निया जैन का। स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर

FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो विस्तार, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। एक और लघु कथा लेकर आपके बीच में हाजिर हुआ हूं, और इस लघु कथा को हमारे को भेजा है कल्लव जोधपुर राजस्थान से श्री सेंसाराम सारन ने। आइए सुनते हैं सेंसाराम सारन द्वारा भेजी गई ये लघु कथा। एक बहू ऐसी भी। बहू विवाह के दूसरे दिन सुबह 7 बजे जो सोकर अपने कमरे से बाहर निकली ना, तो ही ड्राइंग रूम में बैठी सास की कड़क आवाज सुनाई दी। अब ये देर से सोकर उठने का तरीका यहां नहीं चलेगा, सुन रही हो बहू? ये सुनते ही बहू वापिस अपने कमरे में गई और एक डायरी और एक छोटा सा चमड़े का बैग लेकर वापस आई और सास के बगल में बैठकर डायरी का पन्ना खोलकर पढ़ना शुरू किया। मारुति अर्टिगा 16,40,000, 42 इंच स्मार्ट टीवी 52,000, फ्रिज 23,000, वॉशिंग मशीन 22,000, सोफा डाइनिंग टेबल और बेड 1,70,000, मिक्सी ओवन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 4,65,000, नकदी 21,00,000। डायरी में लिखा पढ़कर बहू ने कहा, मम्मी ये वो लिस्ट है जो शादी से पहले इस घर से मेरे पिता के पास भेजी गई थी। लिस्ट में लिखी सारी चीजें मेरे पापा ने मेरे साथ ही भिजवा दी हैं और सभी चीजों का आपने मिलान करके भी देख लिया। और ये भी देख लीजिए, आपने इस लिस्ट में कहीं कोई ऐसी मांग तो की नहीं कि बहू पढ़ी लिखी हो, गुणकारी हो, संस्कारी हो, कामकाजी हो। आपने बस अपने बेटे की कीमत लगाई और मेरे पिता ने आपके बेटे को मेरे लिए खरीद लिया। और हाँ मम्मी, विदाई के वक्त मेरे पिता ने बैग भी मुझे दिया था और कहा था, बेटी जब तक तू मेरे पास है, मेरे आंगन में, तब तक तो सुरक्षित है, मगर अब आज से तुझे अपनी हिफाजत खुद करनी है। सास ने बहुत हैरानगी उत्सुकता से पूछा, भाई इस बैग में क्या है? तब वो ने धीरे से उस बैग को खोला और उसमें से 32 बोर का रिवॉल्वर निकाल के सास के आगे रख दिया। ये देखकर सास झट से अपनी उखली सांस को नियंत्रित करते हुए उठी और कहा, अरे बेटा हमें तो सोकर उठी है, रुक मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। ऐसा व्यवहार किसी के साथ मत कीजिए जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो बहू में तो किसी की बेटी है। अगर आप इतना भर भर के दहेज लेंगे कि देने वाला कर्ज के तले दब जाएगा, आप क्या सोचते हैं? आप उनके नीचे नहीं दबेंगे? दबना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने रिश्ता नहीं, आपने सौदा किया है। सौदों से बचिए, रिश्ते निभाइए, आपस में प्रेम बढ़ाइए, कोशिश कीजिए। दहेज लेना और देना अभिशाप है, इससे बचकर रहिए।

ऐसी लगी आपको ये रचना? हमारे टेलीफोन नंबर 7056413010 पर हमें जरूर बताइएगा। और अब अपने रेडियो दोस्त नरेश शर्मा को दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा एक और नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

حسن کی ہو مثال، ہو پونم کا چاند، زندگیوں کی ہو سحر، ہو ڈھلتی

समय की रफ्तार कभी थमेगी नहीं और ना ही जमीन और आसमान का मिलन होगा। जैसे चांद कभी धरती पे आ नहीं सकेगा या उतरेगा नहीं, वैसे ही जैसे इन पानियों का बहाव रुकेगा नहीं, रुकेंगी नहीं हवाओं की सरगोशियां, रुकेंगी नहीं मौसमों की गर्माहट और ठंडक। बेशक तुम्हारी मोहब्बतों में शादाबियां हैं।

ही अब तन्हा, क्योंकि इन शामों से हम अब अलग हो चुके हैं। रोज देखता हूं बंद कमरे की खिड़की से थके हारे परिंदों की परवाज अपने अपने घोंसलों की तरफ जाते हुए, एक उम्मीद लिए कि सुबह की बरसात भिगोएगी हमारी जात को, हमारी मुस्कुराहटों को।

फुर्सत के लम्हों में क्या कभी ख्वाबों की ताबीर होगी? नहीं, शायद नहीं, क्योंकि मेरे ख्वाब थे फीके फीके और तुमने रंग भर दिए। कैनवास पे उतारने की कोशिश भी की, पर रंग कच्चा था जो बिखर गया, लुप्त हो गया।

ये बेताबियां हैं मेरी उदासी का सबब। चेहरे की मुस्कुराहट बयां कर रही है दर्द की इंतहा, और दर्द उठता है दिल में शब रोज। सजदों में बोलते परिंदे मेरी खामोशी को बांप लेते हैं, ये नदी मेरे पैरों को छूकर गुजरती है, एहसास दिलाती है गुजरे हुए पलों का, मेरे अपने

आज इन बर्फीली घाटियों में एक जिंदगी खामोश है। यहां लम्हे चुप हैं पर रातें हैं शादाब। सन्नाटा पसरा है, गुप अंधेरे भी यहां बोलते हैं। तुम भी कुछ बात करो, कुछ कहो, तोड़ दो अपनी चुप्पी, अपनी उदासी को। आज यहां इन बर्फीली हवाओं में पत्थर भी पिघलते हैं। यहां मेरे सब्र का पैमाना भी अब टूटा जा रहा है। कुछ कहो, तुम भी कुछ बात करो, कुछ कहो।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चाहेंगे हम आपसे इजाजत। नमस्ते।

आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं रमेश मराठा। नमस्ते, आदाब। कहीं उम्मीदों का चिराग बुझ गया, तारों भरी रात ने दम तोड़ दिया।

सूरज की मानिंद सफर पे रोज निकलना पड़ता है। बैठे बैठे दिन बदलेंगे, इसके भरोसे मत रहना। सावन का महीना आते ही बादल तो छा जाएंगे हर हाल में, लेकिन बरसेंगे, इसके भरोसे मत रहना। बहती नदी में

कच्चे घड़े रिश्ते नाते हुस्न वफा दूर तलक ये बहते रहेंगे, इसके भरोसे मत रहना।

तन्हाई में पुकारा किसने, इस लम्हे को सवारा किसने, दिल में लहर उठी है कोई, मुझको अभी पुकारा किसने, सब कुछ डूब गया साहिल पर, ऐसे किया किनारा किसने, मिलने लगा है इसमें सुकून, अब दर्द बनाया चारा किसने, बेहोशी के इस आलम से मुझको आज उभारा किसने।

रात धीरे धीरे खो जाती है अंधेरे के आगोश में। टिमटिमाते तारे आसमां में बिखराते हैं नजारे, चांद लगता है ऐसे जैसे बेकरार हो किसी की याद में। शाम ढलती हुई पर्वतों के पेड़ों पर मानो कुछ पल के लिए ठहर जाती है और सुरमई उजालों में चंपई अंधेरा एहसास दिलाता है दिलबर का, जो उससे मिलकर

कि समंदर में हसीन लम्हे तलाशते कई बार गुजर जाती है तमाम जिंदगी, मगर वो खलिश, वो चुभन, वो प्यार का मीठा सा एहसास नहीं मिलता। और यूं ही जिंदगी गुजर जाती है बिना कुछ

एहसास एक जज्बा जो बसता है हम सभी की धड़कनों में, महसूस होता है सांसों में और आता है नजर चेहरे पे। आज भी ठहरे सागर में लहरों के कारवां बेताब है रक्स करने को, आज भी आईने दिल पर एक साया बेकरार है अपना अक्स भरने को। शायद तुम्हें मालूम नहीं तेरी तलाश में बहारों के फूल महके हैं, बुलबुल चहके हैं। क्यों जर्द पत्तों के मौसम में गुम हो गई हो,

दोस्तों मिले जुले गीतों का ये सफर आपने तय किया अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा बताइएगा जरूर। अब चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्ते।

0: ये फिजाए।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम इनसे मिलिए एपिसोड 12। आज के आमंत्रित मेहमान हैं लेखक एक्टर अतुल भाटिया जी। इनसे बात करेंगे भारत सोपोरी। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, सहयोग निया जैन का, निर्देशन व प्रस्तुतकर्ता भारत सोपोरी।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, लेके आया हूं एक और एपिसोड कार्यक्रम इनसे मिलिए का। इस कार्यक्रम में हम विभिन्न लोगों से बातचीत करते रहते हैं और अलग अलग सेगमेंट में हम लोगों को आमंत्रण देते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं उनके दिल की बात, उनके काम के बारे में और उनके मन के बारे में। आज जो हमारे पास स्टूडियो में मेहमान आए हुए हैं उनसे हम बात करेंगे, उससे पहले आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं। भारत के नाट्य शास्त्र में रंगशाला के निर्माण के संबंध में विस्तृत रूप से बताया गया है। जिस ढंग के नाट्य मंदिरों का उल्लेख प्राचीन उल्लेखों में मिलता है, उससे जानकारी मिलती है कि पर्वतों की गुफाओं में खोदकर बनाए जाने वाले मंदिरों के ढंग पर ही नगर की रंगशालाएं बनती थी। आप सभी जानते हैं मैंने बात की रंगशालाओं की, रंगमंच की, तो हमारे साथ आज जो आमंत्रित मेहमान है हम उनका स्वागत करते हैं, जानते हैं उनके जीवन के बारे में और उनके काम के बारे में, क्योंकि मैं मानता हूं कि रंगमंच हमारी जिंदगी का एक ऐसा प्रतिबिंब है जो हमारी पर्सनैलिटी को, जो हमारे व्यक्तित्व को लोगों के सामने एक और रूप में लेके आता है। आज हमारे पास स्टूडियो में आमंत्रित है जीरकपुर से श्री अतुल भाटिया जी। भाटिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज के कार्यक्रम इनसे मिलिए में FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर।
2: नमस्कार जी भरत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके संदर्भ से आज मुझे मौका मिल रहा है आपके चैनल पर आने का, रेडियो चैनल पर। जबकि मैं बहुत समय से ये सोचता था कि मैं आपसे मिलूं, देर आए दुरुस्त आए, आज आपसे मुलाकात हुई। दोबारा से कहूंगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अतुल जी, शुरुआत वहीं से करते हैं जहां सबसे ज्यादा तालियां बजती है, यानी मंच और कैमरे से। आपका अभिनय का सफर कैसे शुरू हुआ?
2: अभिनय के बारे में मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि आज के समय में अगर हम देखें तो हम सभी लोग अभिनय करते हैं, घर में भी, ऑफिस में भी, अपने बिजनेस में, सब जगह पर। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपको मंच पे करना पड़ता है जहाँ पे लोग देख रहे हैं, जबकि रोजाना के दिनचर्या में हम जो अभिनय कर रहे हैं वो देखने वाला कोई नहीं है, वो सिर्फ हम जानते हैं। जैसे कि मैं उसका एक उदाहरण दूंगा, आप अपने ऑफिस में लेट पहुंचे
1: जी,
2: आपको मालूम है कि आपका बॉस आपसे नाराज होगा
1: और पूछेंगे जरूर कि क्यों देरी हुई।
2: हाँ, और वो ये भी पूछेगा, मगर उस वक्त आप क्या अभिनय करेंगे ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि आप क्या कहेंगे, सर आपको नहीं मालूम मेरे साथ क्या हुआ, इस तरह का अभिनय करेंगे, मगर वो आपके अभिनय के ऊपर वो कहेगा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कल आप जल्दी आ जाना। तो कहने का मतलब है कि हम रोज की दिनचर्या में अभिनय करते हैं, मगर सिर्फ फर्क यही है कि भी यहाँ पे आपको रंगमंच पे आके, एक मंच पे आके आपको अपना किरदार निभाना है।
1: भाटिया जी, अगला प्रश्न करने से पहले मैं आपसे ये पुष्टि चाहता हूँ कि इसका मतलब ये है कि जैसे हम कहते हैं कि ये एक अभिनेता है जो अभिनय करता है, तो क्या मैं मानूं कि हम सब अभिनेता है?
2: जी हाँ, बिल्कुल 100%। देखिए, बच्चे, माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, हम सब जितने भी रिश्ते में हैं और उसके अलावा ऑफिस में, सब जगह पे हम सभी लोग अभिनय करते हैं। अगर मान लीजिए आप अपने बच्चे का कुछ सामान नहीं लेकर आए, आप घर जाके बच्चे को वही चीजें बताएंगे कि बेटा तुम्हें नहीं पता आज मेरे साथ ऑफिस में क्या हुआ, मैं तो आज बहुत काम था, मैं थक गया, मैं ये हो गया, मैं मेरे साथ वो हुआ और कल कोशिश करूंगा पक्का लेके आऊंगा,
1: लेके आऊंगा।
2: उसी तरह से उसी चीज को देखते हुए कल को आपका बच्चा भी स्कूल में जाके वही अभिनय करेगा कि मैम कल तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैंने किया नहीं, मैम कहेगी हाँ कोई बात नहीं चलो कल करके लाना।
1: यानी कि हम मान के चलें कि अभिनय हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग है।
2: जी हाँ।
1: पर भाटिया जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जब वास्तव में हम एक मंच पर अभिनय करने जाते हैं, एक स्क्रिप्ट होता है, एक सोच होती है, एक जो निर्देशक होता है उसके निर्देशन में हमने वो लाइन्स या वो डायलॉग्स बोलने होते हैं, सबसे पहली बार आपने मंच पर अभिनय कब और कहां किया?
2: हाँ सर, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। सबसे पहले मैंने जो अभिनय का सफर शुरू किया वो मैंने किया था अपने कॉलेज टाइम में
1: जी।
2: तब मैंने सिर्फ एक मोनोस्क्रिप्ट पे काम किया था जिसमें मैंने शराबी की एक्टिंग की थी
1: जी।
2: तो उससे मेरा समय शुरू हुआ एक्टिंग का, मगर उसके बाद काफी समय तक मैंने अपना एक्टिंग का कोई काम नहीं किया। कारण कि मैं जब मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया तो उसके बाद मैं मुंबई जाना चाहता था, मगर मेरे माताजी मदर ने मुझे जाने से रोका। वो कहते नहीं, कहते वहां पे क्या करेगा, तो इस तरह से उन्होंने मुझे उस वक्त रोक दिया। और फिर मैं अपने नौकरी में पड़ गया और नौकरी मैंने करता रहा। फिर जब मेरी बेटी की शादी हुई उस वक्त 2017-18 में, तब उसके बाद मैंने ये सोचा कि मेरे को अभिनय करना चाहिए। और तब मैंने अपना पहला सोलो एक्ट एक प्ले किया थिएटर में, टैगोर थिएटर में, सेक्टर 18 चंडीगढ़ में
1: जी।
2: जो था 1.5 इंच ऊपर
1: जी,
2: जिसमें कि एक ऐसे इंसान का किरदार था जो कि अपनी पत्नी के साथ रहता है, मगर उसको ये नहीं मालूम कि उसकी पत्नी कैसे उसकी दुनिया से अलग दुनिया में रह रही है, जहाँ पे कि वो देश विरोधी चीजों में संलिप्त है
1: जी।
2: और उसके घर से ऐसी चीजें मिलती हैं जिसमें कि बाद में उसको पता चलता है कि मेरी बीवी, मेरी पत्नी तो
1: इन कामों में
2: संलिप्त थी
1: जी।
2: और मुझे मालूम ही नहीं था
1: जी।
2: तब वो अपनी व्यथा बताता है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ, जबकि ये एक तरह से जर्मनी बेस्ड कहानी थी
1: जी।
2: मगर वो मेरा पहला किरदार था जिसमें कि मैंने जब थिएटर पे कदम रखा तो उसके बाद मेरे को इतना रिस्पांस मिला, मेरे से सीनियर लोगों का रिस्पांस मिला जो मेरे से काफी सालों से थिएटर से जुड़े हुए, मंच से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने मुझे बताया, कहते सर हम इतने सालों में हम सोच रहे थे कि हम सोलो एक्ट करें, मगर कहते हमें मौका नहीं मिला, मगर कहते आपने पहली बार मंच पे काम किया और सोलो एक्ट किया, ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है ना,
1: आपके इस किरदार के बारे में बात करना चाहूंगा मैं। उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि कोई भी किरदार जब हमने मंच पर मंचित करना होता है तो आप उस किरदार को कैसे समझते हैं, उस किरदार की जो बारीकियां हैं वो आप अपने कैसे मन में रखते हैं, या जो उसके डायलॉग्स होते हैं, स्क्रिप्ट होते हैं, उसको आप कैसे अपने मन में बिठा लेते हैं? मैंने ये प्रश्न इसलिए किया क्योंकि जो ये कार्यक्रम सुनने वाले हमारे नए कलाकार हैं उनको भी आपके इस अनुभव से एक मार्गदर्शन मिले।
2: जी हाँ बिल्कुल, देखिए मैं इसी जो मैंने ये नाटक किया मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। जब ये स्टेज प्ले किया मैंने
1: जी
2: तो 40-45 मिनट का प्ले था
1: जी।
2: अब जब मैंने एक महीना तक उसकी मैंने खूब रिहर्सल की, मैंने उसको याद भी किया, सब कुछ किया, मगर आप यकीन मानिए कि शुरू करने के 5 मिनट बाद मैं एकदम ब्लैंक हो गया। जो मेरे निर्देशक थे, डायरेक्टर थे, जब उन्होंने मुझे देखा तो उनके भी एक बार होश उड़ गए कि गया
1: जी।
2: और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह थी कि उसमें मेरे साथ कोई और किरदार नहीं था
1: जी।
2: जो कि मेरे को
1: सपोर्ट
2: कर सके,
1: याद दिलाता
2: जी। मैंने उसी समय जहाँ पे मैं चेयर पे बैठ के मैं बात कर रहा था, मैं उठा, मैं एक चक्कर काटा उसी स्टेज पर और अपने आप को संभाला, और उसके बाद मैंने फिर शुरू किया, और उसके बाद करते करते मैंने उस प्ले को समापन किया, और लोगों ने इतना रिस्पांस अच्छा दिया कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं बीच में भूला था। जबकि बाद में मुझे गौरव शर्मा जी थे तो उन्होंने मेरे को ये कहा, कहते आपने बहुत बढ़िया किया, कहते कारण कि जो एक्टर या आर्टिस्ट उस वक्त परफॉर्म कर रहा है और जो निर्देशक उसको देख रहा है, सिर्फ वही दो लोग जानते हैं कि आपने क्या मिस किया
1: जी।
2: आपके सामने जो ऑडियंस है उनको नहीं मालूम कि आपने क्या मिस किया।
1: तो ये एक बहुत बड़ी काबिलियत है एक कलाकार के लिए, खास करके जब हम थिएटर परफॉर्म कर रहे हैं, मंच पर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर रिटेक का कोई ऑप्शन नहीं होता है। जब ये आपने सोलो परफॉर्मेंस जो कंप्लीट की, जो अब आपने पूरा किया, आपको लोगों की तालियां भी मिली, सब कुछ मिली, तो कहीं ना कहीं उसका गिला पीछे दिल में कहीं रहा कि मैं ब्लैंक क्यों हुआ?
2: देखिए हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये कलाकार को ही मालूम होता है
1: जी
2: कि वो कहाँ पे उसने मिस किया है
1: जी।
2: मगर उसके बाद से आज तक जितने भी मैंने थिएटर भी किया, मैंने शॉर्ट फिल्म्स में भी काम किया, मैंने वेब सीरीज में भी किया, मैंने सीरियल्स में भी काम किया, मूवीज में भी काम किया, तो मैंने उस थिएटर के पहले एक्ट से मैंने ये सोच के मैं चला कि अगली बार से मैं उसको और ज्यादा अच्छी तरह से याद करके अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकूं, जिससे कि कमी कोई ना रहे, पहली चीज। और दूसरी चीज कि निर्देशक को भी आपके ऊपर कहने का मौका ना मिले
1: जी।
2: देखिए आज भी मैं ये कहूंगा कि मैं अपने अभिनय में परिपूर्ण नहीं हूं, मैं आज भी अपने से छोटों से भी, अपने से बड़ों से भी, मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखता हूं
1: जी।
2: और मैंने सीखा भी है और मेरे में सीखने की भावना भी है
1: जी।
2: कि मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करूं। इसीलिए आज तक अगर मैं कहूं तो मैंने 2017 से लेके आज 2025 आठ सालों में मैंने भिन्न भिन्न तरह के किरदार को निभाया है, जिसमें कि मैंने प्रिंसिपल, डॉक्टर, जज, फिर हस्बैंड, फिर फादर, फिर भाई, इस तरह से काफी किरदार निभाए। जबकि सबसे जो मेरे को चैलेंजिंग किरदार लगा वो लगा जब मैंने पहली बार नेगेटिव करेक्टर किया
1: जी,
2: जिसमें कि मैं ये कहूंगा कि मेरे निर्देशक ने मुझे सिर्फ एक करेक्टर बताया
1: जी,
2: कि आपका ये करेक्टर है, तो मैंने उसमें मैंने अपने आप उसको इम्प्रोवाइज किया। मैंने कहा देखिए अगर मैं इसको सिंपली परफॉर्म करूंगा तो शायद हो सकता है कि उस चीज का इम्पैक्ट उतना ना पड़े
1: जी,
2: उतना असर ना पड़े। मगर मैंने उसमें सिर्फ इतना ऐड किया कि मैंने कहा कि मैं, क्योंकि मेरी जो वेशभूषा थी वो सिर्फ कुर्ता और पजामा थी और एक परना था
1: ठीक है
2: गले में, तो मैंने अपने एक टांग का पजामा ऊंचा करके लंग मारते हुए मैंने उसको परफॉर्म किया, जो कि बाद में सभी ने उसको ये कहा कि अगर ये सिंपल होता
1: तो शायद,
2: उतना इफेक्ट ना पड़ता। और बाद में जब हमारा वो शो, जो हमारी शॉर्ट फिल्म थी स्नेहा, जो कि चौपाल पे रिलीज भी हुई ठीक है, और सबने देखा तो उन्होंने कहा कि जो मेन विलन था वो तो नो डाउट उसका रोल
1: बड़ा
2: था, मगर कहते कि आपका भी उतना ही इफेक्टिव था, सिर्फ किस वजह से कि एक लंग मारने की वजह से।
1: भाटिया जी आगे चलने से पहले आपसे मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बात की एक शॉर्ट फिल्म की या एक फिल्म की जो चौपाल पे रिलीज हुई, जो हमारे जो श्रोता है वो अब भी वहां पर देख सकते हैं, आप मुझे ये बताइए रंगमंच जब हम एक मंच पे करते हैं, जब लाइव होता है उसमें और जब आप कैमरा के सामने अपना किरदार निभाते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है? और जितने भी श्रोता हमें अभी इस समय सुन रहे हैं, बहुत ही बढ़िया जानकारी अतुल भाटिया जी आपको दे रहे हैं। और जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं हमें उसके बारे में सोचना समझना जरूरी है, ताकि हम अच्छी तरह से अपने आप को अभिनय के लिए तैयार करें, चाहे वह हमने मंच पर किरदार निभाना हो या कैमरा के सामने। तो इन दोनों में क्या अंतर है कृपया वो बताएं।
2: देखिए रंगमंच में और जो आप टीवी पे या किसी चैनल पे काम करते हैं उसमें सिर्फ जो फर्क मैं समझता हूँ वो ये है कि रंगमंच पे आपके सामने ऑडियंस बैठी है
1: जी,
2: जिसमें कि आपको अपना फुल वॉल्यूम खुद देना पड़ता है
1: जी,
2: और आपको मालूम है कि लोग आपको उसी वक्त इमीडिएटली आपके किरदार के हिसाब से आपको वाहवाही देंगे या ये कहेंगे कि ये
1: अच्छा
2: कुछ भी
1: नहीं
2: है, जबकि उसके उलट अगर हम देखें, जब आप किसी चैनल पे आते हैं या टीवी में आते हैं तो उसमें आपके पास रीटेक की, डबिंग की, बाकी चीजों की इम्प्रूव करने की गुंजाइश होती है
1: जी।
2: जबकि मैंने ये देखा है कि बहुत जगह पर जब हम किसी निर्देशक के साथ काम करते हैं तो वो ये खुद कहते हैं कि सर अगर आपने इसमें कुछ भी इम्प्रोवाइज करना है इस डायलॉग में आप कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट मैं समझता हूँ वही सबसे बढ़िया है जो किसी भी किरदार को खुद इम्प्रोवाइज कर सके। वो तब करेगा जब वो उस कैरेक्टर में खुद उतरेगा।
1: यानी कि एक अभिनेता में इतनी क्षमता होनी चाहिए जब भी कोई वो स्क्रिप्ट पढ़ लेता है उस किरदार को उसको समझना पड़ेगा और उसको अपने तरीके से उस किरदार में जितनी भी जान डालने की जरूरत है उसको वो जान डालनी होगी।
2: बिल्कुल
1: जी भाटिया जी, आपसे हम बात करते रहेंगे और आपसे एक अलग सी एक बात पूछना चाहूंगा, संगीत का कितना रोल आपकी जिंदगी में है और आपके इस अभिनय में है?
2: हाँ बिल्कुल ठीक है आपने, देखिए संगीत का हमारी सभी लोगों की जिंदगी में एक अहम रोल है। हम कॉल स्कूल टाइम में, अगर मैं स्कूल टाइम से बात करूं तो स्कूल टाइम में मुझे आज भी याद है कि उस वक्त हमारे टाइम में जितने भी सिंगर्स थे उनकी गानों की किताबें बनती थी
1: जी,
2: और मेरी बचपन में आदत थी कि मैं वो बुक्स लेकर आता था। उस वक्त शायद 1 रुपए या 2 रुपए की मिलती थी, 5 रुपए की मिलती थी, तो वो मैं लेकर आता था और मैं उन लिरिक्स को खुद बोलता था।
1: अच्छा।
2: और साथ में गाने की कोशिश करता था
1: जी।
2: ठीक है, मुकेश के गाने मुझे आज भी उतने ही
1: अच्छी
2: तरह से याद हैं और गाता भी हूँ
1: जी।
2: और सभी जितने भी पुराने सिंगर्स हैं उन सभी के गाने हमने खुद वो पढ़े हुए हैं। आज भी अगर किसी चैनल पर वो पुराना गाना आता है तो उसके लिरिक्स जो है ना वो हमें याद है, वो हम उसके साथ साथ बोल सकते हैं
1: जी।
2: इसलिए मैं ये कहूंगा कि गाने तो इंसान की एक तरह से लाइफ लाइन।
1: तो मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे श्रोता इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके लिए भी आप का कोई मनपसंद गीत हो जो हम आपको और श्रोताओं को सुनाएंगे, और अगर आप हमारे श्रोताओं के लिए वो गुनगुनाएं भी तो सोने पे सुहागा होगा।
2: मेरे काफी फेवरेट सॉन्ग्स हैं
1: जी जी,
2: उसमें जो है एक सॉन्ग संजीव कुमार के ऊपर फिल्म आया गया है अनोखी रात का, वो था ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में।
1: क्या आप इसको थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के लिए गुनगुनाएंगे?
2: हाँ जी हाँ, कोशिश करता हूँ। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन?

0: भाटिया जी, बहुत ही उम्दा गीत था ये जो आपकी पसंद थी, और मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भी ये गीत पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए, और हमारे साथ आज हैं अतुल भाटिया जी, जो एक मंच कलाकार है, जिन्होंने टीवी सीरियल्स में काम किया है, शॉर्ट फिल्म्स में काम किया है, फिल्म्स में काम किया है, और साथ में एक और गुण भी है इनमें, और वो है लेखन का। ये लेखक भी है। आइए बातचीत करते हैं अतुल भाटिया जी से। भाटिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सारी जानकारी जो आप दे रहे हैं, हमारी कोशिश FM 90.0 MHz रेडियो इतस्ता पर लोगों तक वो बात पहुंचानी है जिससे हम लोगों का मार्गदर्शन भी कर सके, खास करके उन कलाकारों की जो नवोदित कलाकार है, जिनके मन में बहुत सारे सपने हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, एक कलाकार जब मंच के साथ जुड़ता है या वो कैमरा के सामने छोटा मोटा किरदार निभाता है, उसके मन में होता है कि अब मैंने मुंबई जाना है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप उन नवोदित कलाकारों को क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो मुंबई जाएं, उनको कितनी तैयारी पहले अपने स्तर पर करनी चाहिए, क्योंकि जब मुंबई जाते हैं तो वहां बहुत सारा कंपटीशन होता है, ताकि उनके मन में कोई ऐसी बात ना रहे, वो परिपूर्ण ना हो और वो मुंबई जाएं और उनको वहां पर कामयाबी ना मिले, तो उनके मन पर कोई परेशानी ना हो। तो आप उन नवोदित कलाकारों को अपनी ओर से क्या कहना चाहते हैं?
1: हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कोई भी कलाकार जब इस अभिनय मंच से जुड़ता है तो उसका पहला सपना होता है कि मैं मुंबई जाऊं।
0: जी,
1: मुंबई जाना या मुंबई जाने का सपना देखना बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूं। मगर जो सबसे बड़ी दुविधा है वो यही है कि आज के समय में हर इंसान किसी ना किसी अभिनेता से या किसी निर्देशक से या किसी संगीतकार या संगीत से जुड़े किसी भी व्यक्ति से हमेशा इंस्पायर होता है, और उसका वो रोल मॉडल बन जाता है, और वो उसी को सोच के वो आगे चलता रहता है कि एक दिन मैं भी ऐसा बनूंगा या मैंने भी ऐसा बनना है।
0: जी।
1: अब जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो यही आती है कि हमने रोल मॉडल तो पसंद कर लिया कि हमारा ये रोल मॉडल है।
0: जी।
1: मान लीजिए संजीव कुमार, प्राण साहब,
0: जितेंद्र,
1: धर्मेंद्र या कोई भी।
0: जी।
1: कि हम आज उसकी कामयाबी को देख रहे हैं।
0: जी।
1: कि वो कितना कामयाब है, आज उसके पास क्या क्या है, उनकी स्ट्रगल पे, उनकी मेहनत पे या उनके रिजेक्शन पे, उनको कितनी बार ना मिली, हम उसके ऊपर कभी नहीं सोचते। कारण पहुंचना आसान है वहां पे, मगर वहां पे पहुंच के टिक पाना और फिर कामयाब होना वो आसान नहीं है।
0: जी।
1: मैं खुद मुंबई में रहा हूँ कोविड से पहले। हम एक दिन में 15-20-30 प्रोडक्शन हाउस में, स्टूडियोज में हम खुद जाते थे,
0: अपना ऑडिशन
1: देने, लोगों से इंट्रोड्यूस होने, और उन 20 जगह में हमें मालूम होता था कि शायद उसमें से सिर्फ एक नहीं हमें एंटरटेन करना है।
0: जी।
1: बाकी कोई नहीं करेगा। जी। और होता भी यही था।
0: जी।
1: आज भी मेरे पास उस टाइम के लिखे हुए कितने ही प्रोडक्शन हाउस के एड्रेसेस, फोन नंबर, कॉन्टेक्ट पर्सन सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि उनमें से काम मिलता नहीं है लोगों को, मिलता है, मगर ये नहीं है कि वो आपके मन मुताबिक काम देंगे, वो अपने मुताबिक काम देंगे।
0: मेरा आपसे जानने की इच्छा ये थी कि जब आप मुंबई जाते हैं तो हमें कितनी पहले अपनी जगह पर तैयारी करनी चाहिए, हमारा कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए एज फार एज मंच या कैमरा के सामने काम करने का अनुभव हो।
1: देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि किसी भी काम को करने से पहले आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी।
0: जी।
1: आप तब तक उस काम को नहीं कर सकते जब तक आपको उसके बारे में बेसिक चीजें नहीं मालूम हो।
0: जी।
1: और मैं ये समझता हूँ कि आज के समय में थिएटर जो है, रंगमंच जो है, वो एक सबसे अच्छी व्यवस्था है
0: जहां से हम बेसिक
1: सीख सकते हैं।
0: जी।
1: तो आप सोचिए कि अगर आपने तैयारी ही नहीं की कुछ भी,
0: तो मुंबई जाने का
1: आप मुंबई जाके क्या करेंगे? और फिर रंगमंच ऐसा है जो कि आपके अंदर के कलाकार को और निखारता है।
0: जी।
1: और बाहर निकालता है।
0: जी।
1: और आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा सीख सकते हैं।
0: इसके साथ ही जुड़ा एक छोटा सा प्रश्न मैं करना चाहूंगा, क्या मुंबई जाने के लिए वहां पर कामयाब होने एक अभिनेता के तौर पर क्या कोई शॉर्टकट है?
1: देखिए, जिंदगी में शॉर्टकट तो किसी चीज का नहीं
0: जी,
1: और मैं ये कहूंगा कि आज के समय में यहाँ तक कि चंडीगढ़ जैसी जगह में भी
0: जी
1: बहुत से प्रोडक्शन हाउस, स्टूडियोज, शूटिंग यहाँ पे भी हो रही है
0: जी। सभी श्रोताओं को मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि यह बहुत ही अच्छी और नेक सलाह है उन कलाकारों के लिए जो अभिनय के कला में अपनी किस्मत है वो आजमाना चाहते हैं या अभिनय करना चाहते हैं, जो उनके मन के साथ जुड़ा काम है वो करना चाहते हैं। एक नेक सलाह अतुल भाटिया जी ने आप सभी श्रोताओं को दी और मुझे उम्मीद है कि यही हमारा मकसद भी है कि हम आप सभी को मार्गदर्शन भी कर सकेंगे। आइए अब हम एक और कला के बारे में बात करेंगे जो अतुल भाटिया जी के पास है, वो है लेखन का। भाटिया जी, आप लिखते भी हैं, तो लिखते टाइम आपके मन में क्या सोच होती है या किस विषय पर आप खास तौर पर लिखते हैं?
1: देखिए, लेखन की बात जहां तक मैं ये कहूंगा कि लेखन के जो विचार हैं
0: जी,
1: वो आप के आसपास के माहौल में और आपके आसपास के समाज में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे कि आप मोटिवेट हो सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। क्योंकि मैंने भी ये देखा है और हम सभी लोग ये देखते हैं कि हमारे आसपास इतनी चीजें

0: कुछ ना कुछ हो रहा है
1: जी,
0: या मेरे आसपास ऐसा हो रहा है
1: जी। आपसे जानना चाहूंगा कि क्या हर कोई व्यक्ति लेखक हो सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लेखक जो है वो चिंतक होता है। जब कोई भी चीज उसको समाज में अच्छी या बुरी दिखती है, उसके बारे में वो फिर अपने शब्दों में उसको डाल लेता है। क्या हर कोई व्यक्ति लेखक हो सकता है?
0: देखिए, हाँ, आपकी बात ठीक है, हर इंसान लेखक हो सकता है। अगर उसने किसी भी विषय के ऊपर लिखना है तो उसके लिए उसको गहन सोचना अवश्य पड़ेगा। फिर दूसरी बात यह है कि उसको कुछ ना कुछ समाज से जुड़े हुए विषयों के बारे में ज्ञानता भी होनी चाहिए, और रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या मुश्किलें चैलेंजेस आ रहे हैं, ध्यान और ज्ञान दोनों चीजें होनी चाहिए।
1: आपके लेखन में यादें क्या मायने रखती है?
0: देखिए, यादों की बात ऐसे है कि जो बीत गया हमेशा वही याद आता है
1: जी,
0: वो चाहे अच्छा है या बुरा है
1: जी।
0: जो आने वाला है उसके बारे में तो कोई जानता नहीं है
1: जी,
0: जबकि जीना पड़ता है हमें वर्तमान में
1: जी।
0: और यादें हमेशा जो आपके साथ अच्छी चीजें जिंदगी में हुई हैं, मैं समझता हूँ कि उन्हीं से ही, उन्हीं को ही हम याद करके शायद जिंदगी में
1: आगे की ओर
0: बढ़ते हैं, या कि वो समय ज्यादा अच्छा था।
1: ऐसा कहा जाता है कि जो बीत गई सो बीत गई, इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: आपकी बात बिल्कुल ठीक है भरत जी, कि जो बीत गया वो समय वापस नहीं आएगा
1: जी।
0: मगर मैं ये भी कहूंगा कि बीते समय से जो बीत गया उससे हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए
1: जी। बहुत बड़ी बात कही आपने,
0: क्योंकि जब तक आप उन चीजों से, उस समय से आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे,
1: आगे का निर्माण अच्छे तरीके से हम नहीं कर पाएंगे।
0: यस, बिल्कुल जी।
1: आपको मैं बचपन की ओर लेके चलता हूँ। आप बचपन की कोई ऐसी याद हमें बताइए, हमारे श्रोताओं को बताइए, जिससे आपको ऐसा लगता है कि आज के दिन में जब आप उस बचपन की याद को याद करते हैं, मन में दोबारा ले आते हैं, तो आपके मन में उल्लास, खुशी आती है।
0: बचपन के बारे में मैं ये कहूंगा कि मैंने बहुत छोटी उम्र में ही अपने पिताजी को खो दिया था, तो मैं ये कहूंगा कि जितना भी समय
1: जी
0: मैंने उनके साथ बिताया वो मुझे आज भी याद है
1: जी।
0: और ये कहूंगा कि मेरे पिताजी को भी एक्टिंग का बहुत शौक था
1: जी,
0: वो भी चंडीगढ़ में टैगोर थिएटर से जुड़े हुए थे
1: जी।
0: उन्होंने स्वर्गीय श्री बलवंत राय गार्गी जी के साथ काम किया है। तो शायद वही उनकी मोटिवेशन थी जिसकी वजह से मैं अभिनय के
1: इस फील्ड में आया
0: या इस अभिनय से मैं जुड़ा।
1: तो क्या मैं कहूँ कि आपका जो अभिनय है ये आपको विरासत में मिला है?
0: जी हाँ, बिल्कुल, मैं इसके लिए 100% श्रेय जो है वो मैं अपने पिताजी को दूंगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माता पिता हमारा वजूद है, उनके प्रति जो हमारी सोच है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि उनके होते हुए ही हमारा निर्माण होता है। कभी आप यादों के बारे में कोई ऐसा गाना आप हमें बता सकते हैं जो आपको सबसे अच्छा लगता है और हम श्रोताओं का भी मनोरंजन करें?
0: हाँ बिल्कुल जी, देखिए इस पे मैं कहूंगा कि मेरे फादर का ही यादों से जुड़ा हुआ एक गाना है
1: जी,
0: फिल्म थी दिल एक मंदिर
1: जी,
0: राजेंद्र कुमार का गाना था
1: जी,
0: याद ना जाए बीते दिनों की।
1: तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं के लिए अगर इसको हल्का सा गुनगुनाएं और उसके बाद हम आपको ये गीत भी सुनेंगे।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए, और हमारे साथ आज स्टूडियो में आमंत्रित मेहमान है एक्टर लेखक श्री अतुल भाटिया जी, जो जीरकपुर से खास तौर पर आपके साथ बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। इनसे हमने बहुत सारी बात की, और अब हम इनसे इस आखिरी हिस्से में कुछ खास बात करना चाहते हैं, जो आपके साथ, हमारे साथ, हम सबकी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। भाटिया जी, इस आखिरी दौर में, इस कार्यक्रम के आखिरी दौर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि दोस्त और दोस्ती आपके लिए क्या मायने रखती है, और मैं चाहूंगा कि आप विस्तार में बताएं।
1: हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि दोस्त और दोस्ती। मैं ये कहूंगा कि जिंदगी में दोस्त होना बहुत जरूरी है, पहली चीज। उससे भी ज्यादा जरूरी है दोस्ती
0: जी।
1: अब आप कहोगे कि दोस्त और दोस्ती में क्या फर्क है
0: जी।
1: दोस्त आज के समय में आपके शायद बहुत से हो सकते हैं, जिनसे आप रोजाना मिलते हैं या नहीं मिलते। किसी से हो सकता है आप 6 महीने में एक बार मिले, साल में एक बार मिले, कोई बात नहीं, वो दोस्त है आपका
0: जी।
1: मगर दोस्ती वो चीज है जहां पे कि आपके बोले बिना सामने वाला समझ आए, और ये होना बहुत संभाविक भी है और आसानी से मिलता भी नहीं है
0: जी।
1: क्योंकि कहने को तो बहुत आ जाएंगे, मैं भी तेरा दोस्त हूँ, या मैं किसी को कह दूंगा मैं दोस्त हूँ, मगर अगर कल को आपके ऊपर या उसके ऊपर कोई भी मुसीबत आती है, उस वक्त आप कितना उसके साथ बिना सोचे समझे साथ दे रहे हो, ये दोस्ती है। मेरी दोस्ती अगर मैं कहूँ तो आज भी स्कूल के समय से लेके आज तक अपने दोस्तों के साथ दोस्ती बनी हुई है
0: जी,
1: जिनमें कि बहुत से ऐसे हैं कि मैं जानता हूं कि अगर मैं इस एक व्यक्ति को रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी कहूंगा ना, तो ये मेरे पास आके खड़ा है, मेरे
0: हाजिर,
1: साथ हाजिर है। और उसी तरह से मैं भी हूं
0: जी,
1: कि अगर मुझे पता चल गया कि यार वो इस वक्त किसी मुसीबत में है, तो मैं उसके पास जाके खड़ा हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस इंसान को या वो इंसान आपको कि पैसे से वो सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। पैसा एक साइड में है
0: जी,
1: पैसे से भी जरूरी जो है वो है दोस्ती। अगर वो उस मुसीबत की घड़ी में आपके साथ आके सिर्फ खड़ा भी हो गया ना, तो ये भी सबसे बड़ी चीज है,
0: वही सच्चा दोस्त है। इसके साथ जुड़ता हुआ मैं एक और प्रश्न करना चाहूंगा आपके लिए। आज का जमाना सोशल मीडिया का दौर है, जहां पर हम कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे जो हमें जानते भी नहीं है, और पहले जमाने में हमारे परिवार के जन या हमारे ऐसे दोस्त होते थे जिनके साथ हम समय बिताते थे। तो उस दोस्ती और आज सोशल मीडिया के दोस्तों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं ये कहना चाहूंगा कि उस वक्त जिस दौर में हमारे पास फोन भी नहीं होता था, मोबाइल भी नहीं होता था, या सोशल मीडिया नहीं होता था, उस समय दोस्ती का मायने और था। आज के समय में दोस्ती में भी बहुत जगह पर फॉर्मेलिटीज आ गई
0: जी।
1: मैं स्कूल टाइम में उस वक्त बिना किसी के फोन किए हम किसी के घर जा सकते थे। आज के समय में आपको फोन करके ही आना पड़ता है कि यार मैं हूं या नहीं हूं, तूने पूछा क्यों नहीं
0: जी।
1: तो ये एक फॉर्मेलिटी जो है ना, वो सोशल मीडिया ने या मोबाइल ने हमें बांध दिया या रोक दिया। जबकि पुराने पहले समय में, आज से 30 साल 40 साल पहले, ये चीजें थी नहीं।
0: चिट्ठियां लिखने का समय होता था। और 6 महीने के बाद मिलने का समय होता था। इंसान एक दूसरे के साथ जाके समय बिताते थे, तो जो रिश्ता था वो बहुत गहरा होता था,
1: बहुत गहरा।
0: आज के दौर में जो हमारे रिश्ते हैं वो भी सोशल मीडिया ने तार तार कर दिए, दूर कर दिए। मैं भाटिया जी आपसे अंत में ये कहना चाहूंगा कि आप कुछ खास बात कहना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को।
1: देखिए, मैं सिर्फ यही एक जाते समय एक मैसेज देना चाहूंगा कि दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, इन सभी की अहमियत को हमें समझना चाहिए। बिना इन सब चीजों के शायद हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है
0: जी।
1: अभी कुछ समय पहले ही मैंने अपना एक बहुत अच्छा मित्र खो दिया, ठीक है। और इस कार्यक्रम का जो अंत है, मैं सिर्फ उसकी याद में एक गाने को समर्पित करूंगा
0: जी,
1: जो कि मुझे आज भी उसके साथ बिताए हुए समय, बिताए हुए पल याद आते हैं।
0: मैं चाहूंगा कि आप उनका नाम भी बताएं।
1: मेरे उस मित्र का नाम था अश्विनी
0: जी,
1: जो कि ट्रिब्यून में काम करते थे
0: जी।
1: ठीक है, अभी दो ढाई साल पहले ही हमने उसे खो दिया
0: जी।
1: तो इवन यहाँ तक कि ये जो मैं गाना उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ, मैंने उनके साथ भी बहुत सी पार्टीज में, गेट टुगेदर में गाया है
0: जी।
1: जो था, दिए जलते हैं फूल खिलते हैं
0: जी,
1: मगर बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं।
0: अतुल भाटिया जी, आपने अपने दोस्ती को याद किया, अपने दोस्त को याद किया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारे जीवन में अगर है, वो लोग हैं जो हमारे जीवन में हमारे साथ चले हैं, हमारी खुशियों में साथ रहे हैं, हमारे तकलीफों में साथ रहे हैं। वैसे भी कहा जाता है कि दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए, जिससे आप दिल की बात करते हैं, क्योंकि दोस्ती जब हम करते हैं तो वो रंग या एक व्यक्ति को देख के नहीं करते हैं, वो दिल ही हमें गवाही देता है कि ये हमारा दोस्त हो सकता है, और अगर उस दोस्त को हम खोए तो दिल में कहीं ना कहीं दर्द जरूर होता है। तो सभी श्रोताओं को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपने दोस्तों से प्यार करें। अगर आप किसी दोस्त से नाराज हैं तो आप जाके आंख बंद करके उसको गले लगाइए, और कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और आपका ये अरमा ऐसे ही रहे। तो आप जाइए, अपने दोस्तों को गले लगाइए और दोस्ती में जिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। भाटिया जी, आपको यहाँ आके कैसा लगा?
1: भरत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे अपनी परिचर्चा में शामिल किया, तो ये मेरे लिए एक यादगार समय रहेगा आपके साथ बिताया हुआ, और आगे भी जब भी मुझे समय मिलेगा तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके स्टूडियो में आऊं और कुछ नया रंग लेकर आऊं, जो कि हम अपने लिसनर्स को हम नई नई बातें सिखा सकें और बता सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
0: सभी श्रोताओं को मैं अतुल भाटिया जी के दोस्त अश्विनी जी के लिए डेडिकेटेड गाने के साथ छोड़ रहा हूं, और मिलता हूं किसी और कार्यक्रम में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए एपिसोड 12। आज के आमंत्रित मेहमान थे लेखक एक्टर अतुल भाटिया जी। प्रोग्राम रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, सहयोग निया जैन का। कार्यक्रम को निर्देशित व प्रस्तुत किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं ठाकुर वर्मा।
1: और मैं हूं विकास शर्मा।
0: आज हम एक गाना सजना रिलीज कर रहे हैं रेड प्रो एंटरटेनमेंट की ओर से, जिसको अपने सुरों से सजाया है विपन कुमार ने,
1: संगीत से सजाया है रिएक्स ने,
0: निर्माता है विकास शर्मा
1: और निर्देशित किया है ठाकुर वर्मा ने।
0: ये गीत हम FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अमूल्य है। प्रस्तुत है ये गीत सजना। Your reacts.

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
2: हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे नूं। शब्द नेक कमाइयां ते इस शब्द नूं आवाज दिती है सिंगर बॉबी सिंह जी ने, ते लिखिया सुरिंदर सरताज जी ने, ते इस शब्द की वीडियो जे एस कलवाना जी ने की है। इस वीडियो च काम करने वाले कलाकार पुनीत खन्ना जी, हरदयाल चंद जी, इंदरा जोसन जी, निर्वैर चहल जी ते होर कलाकार। ते इस शब्द नूं प्रोड्यूस किया है हरबंस लाल खन्ना जी ने, ते तुसी इस शब्द की वीडियो भी देख सकते हो नानक गुरबाणी 20 यूट्यूब चैनल ते जाके। शब्द का आनंद माणो ते सब नूं शेयर करो। थैंक यू सो मच।

मन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: दिलों में प्यार का एहसास जगा देता है, ये वो धागा है जो दूरियों को मिटा देता है। हम यहाँ सिर्फ गाने बजाने नहीं आते, हमारा मंच तो दिलों को दिलों से मिला देता है। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर, जो आपके हमसफर है जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बेहद पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है आपकी फरमाइश। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सपोरी,
2: और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। मेरे सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा सब प्रेम नमस्कार। भारत जी, आज का मौसम और हमारे श्रोताओं का मूड दोनों ही बड़े कमाल के लग रहे हैं।
1: बिल्कुल कृष्णा, आज का मौसम इतना गर्म है और इतनी गर्म हवाएं चल रही है, पर फिर भी जो हमारी कोशिश है, जो हमारे शौक होते हैं, वो कभी कम नहीं होते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर हफ्ते का वो दिन आ ही गया है जिसका हमें सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में ही एक बात साफ कर दूं कि जो लोग हमें पहली बार सुन रहे हैं, वो इससे महज एक गानों का प्रोग्राम ना समझे।
2: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा भारत जी। हम यहाँ केवल आपकी फरमाइशें ही नहीं सुनाते, बल्कि हम तो दिलों को दिलों से जोड़ते हैं। ये सिर्फ आपके संदेश या संगीत की दुनिया ही नहीं है।
1: बिल्कुल सही, सच कहें तो आपकी हर फरमाइश में छुपा एक इकरार होता है। इसमें आपका अनमोल स्नेह और बेपनाह प्यार होता है। पल पल जो कटता है आपकी यादों के साए में, ये वो मीठा सा खूबसूरत सा इंतजार होता है। हमारे लिए आपकी फरमाइश आपका वही प्यार है, और वो हफ्ते भर का मीठा सा इंतजार है जो आप हमसे जुड़ने के लिए करते हैं। आपके इसी इंतजार को खूबसूरत बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं सदाबहार गीतों का एक बेहतरीन गुलदस्ता।
2: तो फिर देर किस बात की, आप अपनी धड़कनों को थामिए, चाय की चुस्कियां लीजिए और डूब जाइए शुरू के इस समुंदर में है। भारत जी और मेरे यानी कृष्णा के साथ शुरू करते हैं आज का सफर। आइए सुनते हैं आज की पहली फरमाइश, सीधे आप सभी के नाम। आज की पहली फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव कुम्हार घेड़ा सहारनपुर से, भेजने वाले श्रोता हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब हसन। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म आराधना का गीत। गीत के बोल हैं, बागों में बहार है, और गीत को अपनी आवाज से सवारा है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी ने। तो लीजिए, पेश है इन सभी की पसंद का ये प्यारा सा नगमा।

0: है,
1: आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
2: आप श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से, भेजने वाले श्रोता है रवि कुमार राहुल। ये सुनना चाहते हैं फिल्म जिंदगी और तूफान का गीत। गीत के बोल है, एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले। इस गीत को आवाज दी है मुकेश जी ने, और रवि कुमार राहुल के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल। आइए प्रस्तुत है इनका ये फरमाइशी गीत।

फिर से अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है अंबाला कैंट से, भेजने वाले श्रोता हैं उषा कौशल जी। ये सुनना चाहते हैं फिल्म मधुमती का गीत, गीत के बोल हैं सुहाना सफर और ये मौसम हसी, जिसे अपनी आवाज से सवारा है मुकेश जी ने। पेश है उनकी पसंद का ये फरमाइशी गीत।

लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है नवी मुंबई से भेजने वाले श्रोता है सोनिया शर्मा और ये है सीबीडी बेलापुर से। ये सुनना चाहते हैं फिल्म छाया से गीत। गीत के बोल है इतना ना मुझसे तू प्यार बड़ा। आइए प्रस्तुत है सोनिया शर्मा जी का ये पसंदीदा गीत।

पेश है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से। भेजने वाले श्रोता हैं विनय मोहन खारवन। ये सुनना चाहते हैं फिल्म दो चोर से गीत। गीत के बोल हैं चाहे रहो दूर चाहे रहो पास। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। विनय मोहन खारवन के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता हैं मीनाक्षी प्लोमा व डॉक्टर ईशानी। लीजिए पेश है इन सभी की पसंद का ये गीत।

आप सभी की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से भेजने वाले श्रोता है पी एस नाहवकर। ये सुनना चाहते हैं फिल्म कोहिनूर से गीत। गीत के बोल है दिल में बजी प्यार की शहनाइयां। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। पी एस नाहवकर के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर और साथ ही मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मुरहेकर। और ये धन्यवाद भी करते हैं आप सभी श्रोताओं का, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें फरमाइशें भेजते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपके दिलों को हम दूसरे श्रोताओं के साथ जोड़ दें। तो आइए प्रस्तुत है इनका ये पसंदीदा नगमा।

ये से अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव मंदेवर यमुनानगर से, भेजने वाले श्रोता हैं रणबीर, जगमाल, फूल सिंह, शमशेर, अंगराज और विकास पंजेता। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म ही रांझा का गीत। गीत के बोल हैं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। इस गीत को अपनी आवाज से संवारा है मोहम्मद रफी जी ने। तो लीजिए पेश है इन सभी की फरमाइश का ये पसंदीदा गीत।

0: नहीं।
1: आप सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है चंद्रपुरी अम्बाला कैंट से भेजने वाले श्रोता है मदन गोपाल सैनी जी, ये सुनना चाहते हैं फिल्म इजाजत से गीत। गीत के बोल है खाली हाथ शाम आई है। इस गीत को आवाज दी है आशा भोसले जी ने। आइए, प्रस्तुत है मदन गोपाल सैनी जी का ये पसंदीदा नगमा।

पेश अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव बो अंबाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता हैं राहुल अलियान। ये सुनना चाहते हैं फिल्म राजा और रंग का गीत। गीत के बोल हैं ओ फिर की वाली तू कल फिर आना, जिसे अपनी मधुर आवाज से संवारा है मोहम्मद रफी ने। तो लीजिए प्रस्तुत है उनकी पसंद का ये मीठा सा गीत।

आपको सुनाते हैं श्रोताओं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है पिंड तेजा मोड़ी अम्बाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता है बंशीलाल संधू। बंशीलाल संधू के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है कबीर सिंह संधू, जसबीर सिंह संधू, वरनीत कौर, पवनीत कौर और पूरा संधू परिवार। ये सुनना चाहते हैं फिल्म इज्जत से गीत। गीत के बोल है क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने और आइए सुनते हैं बंशीलाल संधू और उनके परिवार का ये पसंदीदा नगमा।

लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव करधान अम्बाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता हैं संदीप शर्मा, ये सुनना चाहते हैं फिल्म जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली का गीत। गीत के बोल हैं, ऐसे तड़पूंगी जैसे जल बिन मछली, जिसे अपनी मधुर आवाज से संवारा है लता मंगेशकर जी ने। पेश है इनका ये पसंदीदा मधुर सा गीत।

आप ट्यूनिंग किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह जारी है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगर आप इस कार्यक्रम को आज पहली बार सुन रहे हैं तो आप भी अपनी फरमाइश इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। इस कार्यक्रम में आप किसी भी पुरानी हिंदी फिल्म का गीत, हरियाणवी या पंजाबी गीत की फरमाइश कर सकते हैं। आपको हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर गीत के बोल, फिल्म का नाम लिख के भेजना होगा। हम आपकी फरमाइश हर शुक्रवार दिन के 2 बजे पूरी करेंगे और उसका पुनः प्रसारण अगले बुधवार को दिन के 2 बजे होता है। आप अपनी फरमाइशें हमें भेजिए हमारे स्टूडियो के नंबर पर 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। इसके साथ ही आप सभी के लिए प्रस्तुत है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से। भेजने वाले श्रोता है निसार सलमानी और ये सुनना चाहते हैं फिल्म बन फूल से गीत। गीत के बोल है मैं जहां चला जाऊं। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने और निसार सलमानी के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। और साथ में ये कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी आप सभी श्रोताओं का और निसार सलमानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आप हमारे पास अपनी फरमाइशें भेजते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी श्रोता ऐसे ही फरमाइशें भेजते रहेंगे। आइए प्रस्तुत है आप सभी का ये पसंदीदा गीत।

Το πέσχε από σε πίκνιζε εικό φορμάις, γιο χμάρπας άιχε διάλπακ αμπαλακένσε, δείχνει βάλε σωτανε ανελτζί, ये सुना चाहते फिल्म गीत का गीत गीत के बोल हैं शीशी भरी गुलाब की जिसे अपनी आवाज से संवारा है लता मंगेशकर जी ने तो पेश है उनकी पसंद का ये प्यारा सा गीत

0: जी हाँ श्रोताओं, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आएगा। और अब हम लेते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश जो हमारे पास आई है हसीमारा वेस्ट बंगाल से, और भेजने वाले श्रोता है ममता राव। इनके साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है श्रीनिवास राव और आध्या। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म खामोशी से गीत, गीत के बोल है तुम पुकार लो। इस गीत को आवाज दी है हेमंत कुमार साहब ने। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये पसंदीदा गीत, और इसके साथ ही आप हमें दीजिए इजाजत। मैं और कृष्णा हम आपके लिए हर शुक्रवार को लाते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। उम्मीद करते हैं कि अगले शुक्रवार को आपसे आपके नई फरमाइशों के साथ हम रूबरू होंगे और आप सभी श्रोताओं को वो गीत सुनाएंगे। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: मुझे भी दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
3: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: शुक्रिया करम मेहरबानी दोस्तों, जिंदगी हसीन है

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विकसता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
4: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए मोहम्मद अजीज के दिल छूने वाले गाने हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत सफर का।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विद अ स्टार, हम सफर जिंदगी का।
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विद अ स्टार, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं ठाकुर वर्मा।
1: और मैं हूं विकास शर्मा।
0: आज हम एक गाना सजना रिलीज कर रहे हैं रेड प्रो एंटरटेनमेंट की ओर से, जिसको अपने सुरों से सजाया है विपन कुमार ने,
1: संगीत से सजाया है रिएक्स ने,
0: निर्माता है विकास शर्मा
1: और निर्देशित किया है ठाकुर वर्मा ने।
0: ये गीत हम FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अमूल्य है। प्रस्तुत है ये गीत सजना।
2: Your reacts.

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: गलज महल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 14। कार्यक्रम का शीर्षक है बाबुल। रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, एडिट किया निया जैन ने, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरनी।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका एक और खूबसूरत महफिल में, जहां अल्फाज रोशनी बनके चमकेंगे और सुरों की बारिश यादों को गीला करेंगी। ये है रेडियो वितस्ता 90.0 FM, जहां हर एहसास एक गीत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। चलिए शुरू करते हैं एक नए रेट्रो हिट्स का अंक, बाबुल। बाबुल, बाबुल एक बहुत गहराई भरा शब्द है जो बेटी की विदाई, पिता का प्यार और घर छोड़ने का दुख बयां करता है। वो जो छोड़ा था मैंने आंगन, आज भी यादों में महका करता है। ढल गया आंगन का सूरज, अब अंधेरा छाएगा। बाबुल की लाडली बेटी एक दिन पराई हो जाएगी।
1: बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुख।

बाबुल के चेहरे पे मुस्कुराहट थी लेकिन आंखें नम थी। जिसे कल तक गोद में खिलाया आज वो दुनिया की शान थी।

मैं जब घर छोड़कर यहाँ पहली बार आई थी तो मैं बहुत रो रही थी, और आज जब घर वापस जाने का वक्त आ गया है तो फिर से मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं।

हर गीत एक नया मोड़ लाती है, हर याद एक नए इंतजार की दस्तक देती है। आज की महफिल यहीं तक, पर कहानी अभी बाकी है। फिर मिलेंगे नए सुरों नए जज्बात के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 14। कार्यक्रम का शीर्षक था बाबुल, रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, एडिट किया निया जैन ने, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज की प्रस्तुति।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

हमारा यह सफर यूं ही चलता रहा और गुजरती गई सदियां। पनाह गाहों में पनाह लेने की ख्वाहिश सीने में ही दब गई। तुमसे मिलना, तुमसे बिछड़ना एक आदत सी बन गई। बीते लम्हे रुसवाई का रास्ता दे गए और पथरीली रेतीली राहें मंजिल का पता बता।

पर छूट गए साथी, सिमट गई जिंदगी, जज्बा मोहब्बत का टूट गया, बिखर गया हर पल, अपना साया भी पराया होने लगा। जो मिले वो अचानक रूठ गए, यहां के साहिल दरियाओं से बिछड़ गए, और इन दरियाओं के पत्थर पानी के लिए तरस रहे हैं। इन्हीं पानियों में कभी चांद आकाश से उतरकर डुबकी लगाया करता था, पर अब सब कुछ अलग है, भिन्न है, जब अपने ही पराए हुए

बाती ही और है तुम्हारी फरामोशी। रंग बिखर पड़े हैं पर रक्स करती हैं फिजाएं। शायद सोचा होगा कि हवाओं के रुख में बदलाव होगा, पर ये जरूरी तो नहीं कि मौसम बदलते ही तुम लौट आओगे इन घने बादलों को चीर कर। और यह भी तो जरूरी नहीं कि दिल की बातें हों, बातों बातों में तुम याद आओगे।

छोटा सा गांव है पर अजनबी रास्ते हैं। किससे मुखातिब हो जाए, हर कोई एक दूसरे से अनजान है। इन फासलों के दरमियान अपने आप को भी पहचानना मुश्किल सा लगता है, लेकिन इसके बावजूद यहां खुशबू है अपनेपन की, यहां मिठास है मोहब्बतों की, और दूर एक कोने में यहां दर्द भी बिकता है।

परी आसमां से उतरी थी, मुझे छूकर गुजर गई। अपने दुपट्टे से मेरी नींदों को चुरा ले गई। मेरे कानों में चुपके से कुछ कह गई। ये कुछ लम्हे तुम्हारे नाम हो गए, इनको संजो कर संभाल कर रखिएगा। अपनी दुआओं में मुझे शामिल कर मुझ पे एहसान जताया, नवाजिश करम, शुक्रिया।

आप सुन रहे थे रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज के हमारे प्रसारण अब यहीं समाप्त होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक लगातार रहते हैं। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कृष्णा। चाहूंगी आपसे आज्ञा, विदा लेने से पहले आपसे कुछ पंक्तियां शेयर करूंगी। दोस्तों, आपको मालूम है हमारे जीवन में हमारी सबसे बड़ी नेमत या वैल्यूएबल थिंग्स, जो चीज़ें होती हैं, सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं हमारे माँ बाप का हमारे सिर पर साया और जीवन में सच्चे जेन्युइन दोस्त। तो अपने उन्हीं कुछ चुनिंदा सच्चे दोस्तों के ऊपर हमने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, वो हम अभी आपसे शेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि जिंदगी से बेजार हो गए, ऐसा नहीं कि जिंदगी से बेजार हो गए, हाँ कुछ आबो हवा बद्दुआ के शिकार हो गए। रोशन रहे उनका जहां हमेशा, जिन दोस्तों की दुआ से मौत से भी लड़ने को तैयार हो गए। तो इसी के साथ आपसे लेंगे आज्ञा, मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर नई ऊर्जा, नई उमंग और नई बातों के साथ। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।